नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है।

0: डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्री कृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मडगांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माही, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. The Lok Sabha will resume the discussion on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 today. Union Minister Dr. Jitendra Singh moved the bill for consideration and passing in the House yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to

0: पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले 2 दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फूर्ति और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
3: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
4: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी

0: स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
1: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। AITC के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाबू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त से खुल जाएगा।
2: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किश्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र 1.25 साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
1: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोचू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प

0: सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की ये श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले दो दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्ता ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है POK में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई, 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया है एक दिन में 6 पदक। पत्र ने पदक विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें छापी हैं। जनसत्ता ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है खतरे का तापमान। पत्र का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें अमल में लाने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। विडंबना यह है कि कार्बन उत्सर्जन में जिन देशों का योगदान सबसे कम है उन्हें ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2,500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या हुई 30। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय हो गए हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for breaking horizontal and vertical silos within government to ensure close coordination.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर पे आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाइए हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यह जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा

0: कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
1: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, थालियां परोस के दे दिया, अब आप कहां से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हां कहे हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष हुआ, हां वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
4: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखवापदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और ओडीएफ के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों

0: और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
1: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
2: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी गुरु को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा उन्हें प्रणाम। सोनाली आपको भी नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
0: आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सच में अगर गुरु न होते तो हम इतना सब कुछ कैसे सीख पाते लगता है। हालांकि सबसे पहले गुरु तो माँ होती है, माँ के बाद सबसे पहली गुरु या पहला गुरु जो होते हैं वो स्कूल में टीचर होते हैं। तो कई बार ये स्थिति आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
1: बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए।
0: हाँ, तो ऐसी नौबत भी आती है तो हमें लगता है कि बस जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्हें प्रणाम कर लें। आज
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी हमने विविध भारती से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल, तो हम सभी विविध भारती को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमने भी तो सीखा है
1: जी, और हमने बहुत सारे हमारे जो साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है। वो जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता
0: है। बिल्कुल, और श्रोताओं का से तो हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है
1: जी।
0: जब वो कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हैं, कोई आलोचना लिखते हैं, तो उससे हमें हमारा विकास होता है, परिष्कार होता है हमारी भाषा का, शब्दों का जो हम बोलते हैं और विषयों का। अब बात विषयों की चली है तो हम बता देते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और बाघ के नाम से डरी तो नहीं ना डर तो लगता है,
1: डर तो लगता है,
0: लेकिन देखने भी जाते हैं हम लोग, घूमने भी जाते हैं।
1: बस हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए जब हम देखने जाते हैं, जब हम जंगल सफारी पे जाते हैं तो उस वक्त हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि हम जोश में आके ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं हम सभी कि उसके कारण जो है बाघ जो है वो हमारे ऊपर हिंसक रूप से हमला वगैरह
0: करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि जो सबकी बोलने की आदत

0: होती है, समूह में जाते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, तो जब वहां जंगल सफारी की सैर पर जब जाएं तो एकदम जैसे मोबाइल में म्यूट बटन होता है, म्यूट टच, तो वैसे ही म्यूट हो जाएं वहां पर, क्योंकि जरा से भी बातचीत से उनका असंतुलन होता है, ध्यान विचलित होता है और फिर हमला कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो जंगल विभाग के अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा इसका ख्याल रखते हैं और
1: रखते हैं।
0: हाँ, और वो बताते भी हैं, हमें समझाइश भी देते हैं इस बात की
1: जी।
0: और
1: आज क्रेडिट कार्ड का माया जाल जिसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी,
0: बिल्कुल,
1: तो इस बारे में भी आप लिखकर भेजिए कि आप के क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से ने क्रेडिट कार्ड का हमें उपयोग तो करना ही है पर उसे किस सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, यानी उसके माया जाल में हमें फंसना नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही है। सोनाली, एक बात बताइए कि जब कहीं घूमने जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में तो क्या पहनना पसंद करती हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ड्रेस या फिर और कुछ?
1: साड़ी पहनना बहुत पसंद है।
0: हमें लगता है हर भारतीय स्त्री को साड़ी पहनना पसंद आता होगा। हमने तो सुन रखा है कि जो सुन क्या बातें होती रहती हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है, तो जो विदेशों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यहाँ से बाकायदा साड़ियां मंगवाया करती हैं
1: जी, और पहनती भी हैं बड़े शौक से,
0: मौकों पर शौक से पहनती हैं
1: जी।
0: तो साड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देंगे, क्योंकि साड़ियों का
1: साड़ी केरल
0: साड़ियों का संसार क्योंकि बहुत समृद्ध है
1: जी,
0: तो साड़ी के बारे में जानकारी देंगे। और शब्द बहुत अहम होते हैं, हाँ, वो एक तीर की तरह है। कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली दोनों वापस नहीं आते,
1: नहीं आते,
0: तो इसलिए जो भी बोलें तो सोच विचार कर बोलें, शब्द हमारा और विचार आपके।
1: इसमें आदर को हमने चुना है, तो आदर भी वैसे ही ममता जी कि आदर जब हम देते हैं तो हमें आदर मिलता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या हम उम्र हो, सभी से आदर के साथ पेश आए तो हमें भी आदर ही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: और व्यंजन,
0: उसके बिना तो अधूरा लगता है।
1: और व्रत के व्यंजन, अब व्रत के व्यंजन की बात चलती है तो वही बात चलती है, लोग वही मूंगफली दाने, वही साबूदाना, पर हम उसमें भी अगर कुछ पौष्टिक खाएं, जैसे मखाने खा सकते हैं, फिर कच्चा पपीता है उसके व्यंजन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर रामदाना है जिसे राजगीरा भी कहते हैं, या सामा के चावल, तो उसमें कुछ पौष्टिक हो तो उस तरह के व्यंजन भी हमें लिखकर भेजिए।
0: बिल्कुल, और मखाने के लड्डू भी बनते हैं,
1: मखाने की खीर बनती है,
0: जो खाने के बाद अक्सर मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं
1: जी,
0: तो अगर इस तरह खाएं, व्रत में खाएं या ऐसे भी खाएं, बहरहाल अब क्या करें,
1: अब गीत सुनते हैं
0: ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। जैसे गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, संस्कार और आत्मिक उन्नति का मार्ग गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रशस्त होता है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब चाहिए आपने कहा ना, तो हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए
0: जी।
1: उसके लिए हमें खुद निजी स्तर पर जूझना चाहिए। एक कहावत याद आ रही है, जब बाघ की बात चली है, आज हमारा विषय भी है, आज बाघ दिवस है, तो ऐसे में लोग कहते हैं ना कि जंगल की शान है बाघ, प्रकृति की पहचान है बाघ। जिस दिन जंगल से बाघ चले जाएंगे उस दिन जंगल भी वीरान हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक वन्य जीव नहीं है बाघ, बल्कि ये पर्यावरण के प्रहरी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और अगर हम जंगलों की जो कटाई होती है, क्षरण हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकेंगे तो हम बाघ की सुरक्षा कर सकते हैं। जो लोग शिकार करने जाते हैं और बड़े मजे से शिकार करके लौटते हैं और कहते हैं कि हम बाघ का शिकार करके आए, वो ठीक नहीं है। तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये वन्य जीव हमारे साथ नहीं रहेंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे, तो हम जंगल से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे
0: जी। और बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होते हैं संतुलन में। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। और एक स्वस्थ बाघ आबादी, समृद्ध जंगलों और बेहतर जल प्रणालियों का संकेत देती है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।

0: इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक टाइगर समिति के दौरान ये हुई थी।
1: और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना इत्यादि बातें शामिल है। और भारत को विश्व के बाघ संरक्षण में अग्रणी देशों में माना जाता है। दुनिया के अधिकांश भाग बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यानी 1973 और बाघ अभयारण्यों की स्थापना जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: तो अब एक काम करते हैं, ऐसा ही एक गाना है जिसमें जंगल आता है और पूरा जंगल की कहानी है
1: और बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती है,
0: तो सुने वही गाना
1: जी।

बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? कई साल पहले की ये बात है।

0: नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़ आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: हाँ तो भाई,
1: अरे एक साथ
0: हमारे एक साथी ने लिखा है, एक बाघिन तो मेरे घर में ही है, मेरी वाइफ।
1: अच्छा
0: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं।
1: लेकिन भाई अगर वो सुन रही हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये बात उनकी सुन ली जाए और ताकि उनको ये दोबारा कहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कैसे कह सकते हैं बाघिन।
0: और एक सखी ने और लिखा है कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पार्क में हम बंद गाड़ियों में हम घूमने गए थे और जो दो बाघ अगल बगल से आ गए, जबकि हम सुरक्षित थे पर डर के मारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली और हम एकदम बुद्ध बनकर गाड़ी में बैठे रहे।
1: क्या बात है भाई। तो ये मतलब बाघ से डरना भी जरूरी है लेकिन बाघ से प्रेम करना भी जरूरी है
0: और बाघिन से भी डरना जरूरी है।
1: बिल्कुल। और
0: डर में उपस्थित,
1: हाँ वो डर प्रेम वाला डर होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डर अगर लगी तो फिर घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी।
0: वैसे आज साड़ियों का संसार, इसमें हम कसाबू साड़ी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो कसाबू साड़ी भारत की सबसे प्राचीन, गरिमामयी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है। अपनी सादगी, शालीनता और सुनहरे किनारे ने सुनहरी जरी के कारण कसाऊ साड़ी भारतीय हस्तकरघा कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।
1: और कसाऊ का मतलब ही है कि गोल्डन बॉर्डर किनारा ना, यही सुनहरी जरी इस साड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है, विशिष्टता भी है। पारंपरिक रूप से इसमें असली सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता था, जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
0: बहुत महंगी हो जाएगी,
1: बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, तो इसलिए कि वो नहीं लगे तो अच्छा है
0: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपने विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
1: और अमूमन इसका मूल रंग सफेद या ऑफ व्हाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों में भी ये उपलब्ध है।
0: यानी आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हथकरघा यानी हैंडलूम पर किया जाता है। पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
1: और ये भी बता दें कि कसाऊ साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसाऊ साड़ी पहन लेती है। और कसाऊ साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
0: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
1: अब एक गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताजा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और वहां पर
0: पहन के पोस्ट करना
1: हाँ। फोटो डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है
0: जी।
1: तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है।
0: अब जैसे सखी ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है।
1: जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुंचा रहे हैं कि जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना
0: जी।
1: तो अब क्या करें, हम
0: ब्रेक लेते हैं।
1: ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति।

0: फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली। और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है और हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते हैं,
4: इस माया जाल में उलझ जाते हैं।
3: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
4: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में ये सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का खर्च है, सब कुछ एक छोटी सी स्वाइप में संभव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो अपनी वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य की कमाई खर्च कर रहे हैं।
3: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कैश रखने की जहमत भी नहीं उठाना है और क्योंकि कैश रखो, गिनो, खर्च करो, कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन कई बार नुकसानदेह भी होता है। बाजार इस मनोविज्ञान को भली भांति समझ जाता है। कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, जीरो डाउन पेमेंट और विशेष छूट जैसे आकर्षक प्रस्ताव उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं।
4: यानी हमें जो लालच मिल जाता है तो हम भी लालची बन जाते हैं और कई बार लोग केवल ऑफर का लाभ लेने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं ममता जी, जिनकी वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं।
4: तो मन बहुत है, भले हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में,
3: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही हैं। इससे बचना चाहिए।
4: समय के साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
3: जाहिर सी बात है, अगर ब्याज होगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये माया जाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
4: हालांकि क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है। इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
3: बिल्कुल सही। सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को बजट का हिसाब करते हुए देखा था। कागज पर, पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे आए, कितनी है और कितने खर्च करने हैं। महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा। अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीजें खरीदते रहिए और हाँ कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का, फायदे भी है।
4: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने जमाने में यानी 2-3 महीने बाद में कोई बड़ा त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली, तो उसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज्यादा बचत करना है तो फिर त्योहारों के वक्त हमारा खर्च ज्यादा होगा। आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
3: और बुजुर्ग कहा करते थे, चादर जितनी हो उतनी ही पांव पसारें। और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है। वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं बल्कि संतुलित खर्च, नियमित बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
4: और

0: इस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीददारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछें, क्या मेरी यह आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
1: बिल्कुल सही कह रही, क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दे एक गाना इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी?
1: हाँ, कहेंगे ममता जी, श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं।
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी तो सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी, हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाल मैं बताना चाहूंगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली है, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जान बची लाख हो पाए।
0: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आह्वान किया था कि शब्द हमारे, विचार आपके
1: जी।
0: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है जी। तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या? और हमें तो इंतजार रहता है उनकी टिप्पणियों का, और उन्हें इंतजार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं। तो तब तक एक काम करते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं। और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी, तो हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत की शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहाँ पर एक मिनट हम अपने श्रोताओं से फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो, क्योंकि ये जो सेगमेंट हम श्रोताओं के नाम रखते हैं कि हम एक विषय देते हैं और आपको अपनी टिप्पणी लिखनी होती है
1: जी।
0: तो आदर शब्द हमने दिया है आज, तो आदर पर वो उनके क्या विचार हैं वो भेजें। तब तक हम ये टिप्पणी पढ़ रहे हैं
1: जी।
0: व्रत की शाही नमकीन बनाने के लिए कच्ची मूंगफली 100 ग्राम ले लें, और मोटा वाला साबूदाना ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चारोली, चारोली यानी चिरौंजी दाने, और बादाम गिरी 100 ग्राम, मखाने 50 ग्राम, खरबूजा और कद्दू के बीज 50-50 ग्राम, शुद्ध घी तलने के लिए। अगर आप तलना नहीं चाहती हैं तो सिर्फ मूंगफली को भून ले, सेक ले, सारी चीजों को मिक्स करके ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर, काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी। और अगर घर में एयर फ्रायर न हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबूदाना न डालें, साबूदाने को अलग से कढ़ाई में भूनकर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
1: एक हमारे साथी ने मखाने या साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताजे दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताजा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी हलवा या नमकीन सिंघाड़े की कड़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा, इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही वड़े लिखकर भेजे हैं।
0: अरे वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते हैं।
1: 1 कप सामा के चावल, 1/4 कप साबूदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे, फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डाले, साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ एक उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले, और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए, और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले, और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो 5 मिनट के रख दे, फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनार दानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है, जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने, ऐसे ही बगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर, फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी छाछ और खूब सारा पानी, इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले, तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज की तुलना में खूब सारा तला भुना खा लें और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए।
1: जी।
0: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे, कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए
1: जी।
0: लेकिन अभी और बाकी हैं, सुनते हैं गाना।

0: सुनारी, रात के कली एक ख्वाब में आई। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं
1: जी।
0: और ख्वाब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है, अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है तो बहुत खराब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब भी बोले तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोले, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: कई बार बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो या फिर वो हम उम्र हो, है ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलते हैं?
1: जी, बोलना ही पड़ता है आजकल के छोटे भी।
0: सीखेंगे कैसे?
1: जी जी,
0: अगर हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहाँ से सीखेंगे, है ना।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है। इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है, अधिकार नहीं। उपहार आदर कभी भी ताकत या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता, इसे अपने आचरण से कमाया जाता है। आत्म सम्मान से जुड़ाव, जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता वो दूसरों का सच्चा आदर कभी नहीं कर सकता।
0: कई बार तो सम्मान लोग मांग के लेते हैं, कहते हैं कि देखो अरे आपने हमसे ऐसे बोला, हम तो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं और ये हम इतने बड़े हैं आपसे उम्र में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आदर नहीं मांगते हैं, वो जैसे भिक्षा मांगते हैं। और आदर मांग के नहीं लिया जा सकता है
1: जी,
0: आदर के लायक
1: कमाया जाता है,
0: कमाया जाता है, उसके लायक बनना पड़ता है। आपके भी आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो कि लोग अपने आप विनम्रता से झुक जाए आपके सामने।
1: एक साथी ने लिखा है कि आदर वो सुगंध है जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से फैलती है। जिस घर में आदर का दीपक जलता है वहां प्रेम की रोशनी भी कम नहीं होती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो खामोश भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है। इसमें ऊंची आवाज की नहीं बड़े दिल की जरूरत होती है। जहाँ आदर हो वहाँ रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं।
1: एक साथी ने और भी लिखा, आप पढ़ रही है? और
0: नहीं, आप पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं।
1: जी, एक साथ ही लिखते हैं, आदर ऐसी चीज है जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। बड़े हो या छोटे, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी बात सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। मेरा मानना है सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता और रिश्ते बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं। जब जहां आदर होता है वहां प्यार, अपनापन और विश्वास अपने आप आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे आपने हमें आदर दिया भी कि आप पढ़ेंगे, तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए। तो ये एक शब्दों में आदर कहीं छिपा होता है
1: जी,
0: हमें बताने की जताने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम श्रोताओं को बता रहे हैं, वरना हम आपस में कहां कभी बताते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। क्या बात है भाई, जिस व्यक्ति के व्यवहार में सम्मान होता है उसके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहता है। बड़े हो या छोटे, हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। मीठे शब्द, विनम्र व्यवहार ही सच्चे संस्कार की पहचान है। हमने तो कई घरों में देखा है कि वो छोटे बच्चों से, 3-4 साल के बच्चों को भी आप कहकर बात करते हैं
1: जी।
0: तो कई बार ये भी लगता है इतने छोटे बच्चे को आप क्या कहना, लेकिन वहीं से सीखते हैं बच्चे
1: जी। और फिर बच्चे हम जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही वे पेश आते हैं।
0: अब आदर की बातें हो गई हैं, अब घड़ी की ओर जरा देखिए।
1: तो गाना सुनते हैं
0: ये गाना, प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: भाई दिल तो हमारा भी अभी नहीं भरा है, लग रहा है कि अभी और थोड़ा बोल लें बतिया लें, लेकिन बिल्कुल
1: रुकना पड़ेगा।
0: तो अब सभी श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार, नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं।

0: अच्छा ये बताइए अपने परिवार वालों में किसके लिए कौन सा गाना गाते हैं आप लोग?
1: पर्टिकुलरली ऐसा तो घर के अंदर वो बोलते ना कि जो बाहर अपना प्रोफेशन होता है, घर के अंदर इंसान की आखिर पूरी पर्सनैलिटी अलग होती है
0: बिल्कुल
1: तो वैसा तो होता नहीं है। कभी घर के अंदर तो उल्टा शायद अगर गा रहे हो तो घर वाले बोलते होंगे कि भाई अभी यहाँ बन।
0: आपके साथ भी ऐसा होता है?
2: मेरे साथ तो क्या है कि अगर रिहर्सल है और शाम को शो है तो मुझे पता है कि मैं सुबह निकल रहा हूँ, रात को घर वापस आऊंगा। तो वाइफ का थोड़ा सा मूड उखड़ा रहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, गा के चला आता हूँ। उसके बाद ना कोई फोन आता है ना कोई मैसेज आता है, घर में शांति बनी रहती है।
0: ये देखो गाना जो है एक जरिया बन गया खुश करने का। तो ये गाना सुनाइए।

0: तो मतलब ये गाना काम कर जाता है
1: कभी कभी कर जाता है।
0: अच्छा ये बताइए, रेडियो का आप लोगों की जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रहा है बचपन से अब तक? विविध भारती एक ऐसी संस्कृति है, मैं इसको रेडियो चैनल के बजाय कल्चर कहना ज्यादा पसंद करता हूँ।
2: हम तो मैं समझता हूँ इतने खुश नसीब लोग हैं कि हमने अपने दौर में रेडियो का वो सुनहरा दौर भी देखा है कि जब एक किसी के पास एक रेडियो हुआ करता था और हम उसके घर पे इकट्ठा होके 8-10 घर के अड़ोस पड़ोस के लोग, क्योंकि सबके रेडियो भी नहीं होता था, तो जैसे रेडियो सिलोन सुनते थे अमीन साहनी साहब को, तो वो दौर भी देखा। हवा महल एक प्रोग्राम आता था आपका, मेरा बहुत फेवरेट था वो, मैं 9:15 बजे वो हमें सुनता था।
0: क्या बात,
2: तो आपको इतना हमने सुना है इन दिनों आप जो काम कर रहे हैं, तो ये चीजें संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में, इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी।
0: क्या बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी,
1: बहुत बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गांव में पला बड़ा हूँ वहाँ पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में।
0: हाँ।
1: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच में रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके पंखे आते रहता था और सुनता रहता था।
0: बाबा
1: वो दौर लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब अब वापस नहीं आया।
2: सच सच बात, सच
1: बहुत मजा आता
0: तब
1: था उस टाइम पे,
0: एक सादगी थी और सब लोगों का साथ था,
1: सच में सच में,
2: और बहुत खुशी थी।
1: हाँ। बहुत खुशी।
2: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी, लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकिन गए।
0: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
2: अब ये हमारी चॉइस की बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद है। ये ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा कोई अपनी पसंद का गाना सुना,
0: ये बड़ा मुश्किल हो जाता है
2: कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है।
0: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन,
2: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं।
0: और एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने।
2: हाँ क्या बात है, क्या फ्लूट उसमें बजाई,
0: क्या

वाह वाह वाह, देखिए हमने रोशन की बात की, अब गोविंद जो है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर बोलने वाले हो मेरी तरफ। मुझे ना रानी रूपमती फिल्म याद आ रही है।

0: एस एन त्रिपाठी का संगीत है और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा वो फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया है, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है,
2: हाँ
0: है ना।
2: हाँ,
0: आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिलाया, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं?
1: चंदन सावधान ने
0: आप गाओ।

0: क्या बात क्या बात है। देखिए आज हम मुकेश जी को याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए न केवल उनके गानों की उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
1: गोदान राजकुमार।
0: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
1: वाह, सही बात,
0: जो भोजपुरी शैली का गाना है।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू का बाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है। मैं हूँ ठुमरी तू है ख्याल, मतलब ये कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र कृष्ण क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
1: मुझे कहते

0: क्या बात है।
1: मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता, एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है। मजरू साहब का ये गाना,
2: तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली

0: गोविंद, ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की, और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं, जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था, और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया, और रेफरेंस देने वाले भी यही है।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, हार्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आठ के आठ शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से दो घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना, वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी, जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की, और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहने को रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की जिंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के, सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है, उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी, और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव
0: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूँ और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।

0: मुझे स्ट्रीट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तन्हाई में यहाँ लौट गया था। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
1: हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
0: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
1: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे हाँ। मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
2: मैं सीरियस जाता हूँ एक्चुअली, मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना वही मैं भी सोच रहा था,
1: तब तक ये सोच
2: उनको ये गाना है
1: ये। लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में।
0: लग

0: क्या बात है, क्या बात है। देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात है, सकते हैं। वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
2: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है और बेटा जो है वो नए गाने।
1: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
1: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सब कुछ सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
1: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: वो नहीं सुनती, वो इसलिए शोज में भी नहीं आती, बोलती तुम भाई तो गाओगे, कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो। अच्छा। अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा।
1: भी सुनो सुनो सुनो
0: बिठा के
1: सुनना पड़ता है। हाँ, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
2: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं। हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हुए और इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रीमिक्सेस हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रीमिक्स कर दिया। कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
2: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
2: मैं समझता हूँ कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम उन लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूं तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं। शो खत्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहां के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम तो अब उसमें उन लोगों को डांस करना है तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस करने में।
0: क्या मजेदार बात है। हाँ। मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिन आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए। ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
2: तो शायद ये नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय।
0: गोविंद आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
1: मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करो तो मतलब मेरा ऐसा मानना है या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल के, जो जनरेशन आजकल तो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वो गा भी रहे हैं, मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, ये सब गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई,
0: आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
2: बिल्कुल। और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं?
2: यस यस
0: यस, है ना?
2: यस,
0: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं।
2: Exactly.
0: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
2: एग्जैक्टली Exactly. सही बात है।
0: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
2: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहाँ गए वो दिन, ये गाना हुआ या दोस्त दोस्त ना रहा या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो खत्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए, क्योंकि ये गानों का फील इतना जबरदस्त है,
0: बिल्कुल
2: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है। तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो
0: जी
2: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
0: बिल्कुल।
2: तो जाने कहां गए वो दिन जा।

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद, आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3,00,000 से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन्स के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
2: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।

0: दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल।
1: क्या बात है, ये वो गाने हैं जो जिंदगी के तनावों और दबावों में हमें थामते हैं।
2: Exactly.
1: अब एक बात बताइए कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में बाकी तमाम गायक होते और मुकेश न होते तो कितनी सुनी होती ये दुनिया।
2: मतलब अब हमारे हिसाब से अगर आप देखें तो हमको तो बहुत सारा वैक्यूम दिखाई देता अगर जी। मुकेश जी नहीं होते तो
1: जी,
2: क्योंकि मुकेश जी ने गाने कम गाए हैं बनिस्बत और प्लेबैक सिंगर्स के, लेकिन आप भी जानते हैं कि उनका जो पॉपुलैरिटी का रेट है, ग्राफ है, वो अगर कंपैरिजन किया जाए जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स दूसरों ने गाए हैं वो सबसे ज्यादा है।
1: आम जनता की बहुत चहेते गायक,
2: बहुत चहेते गायक थे। यस यस,
1: गोविंद आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल ये बात तो सही है मुख्तार भाई, से मैं एकदम वो सहमत हूँ कि एकदम अगर वो नहीं होते तो एक खालीपन होता। और गाने भले बहुत कम गाए हैं और हाँ। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि नंबर ऑफ सोलोज जितने हुए डुएट्स सब ज्यादा हिट्स उनके पास ही हैं। और गुजरात के तो बाप रे बादशाह ही माने जाते हैं वो। गुजरात में तो हर घर में हर गली गली में उनके गाने बजते हैं।
1: तो दामाद थे वो गुजरात,
2: गुजरात
1: ना, दामाद थे। उनकी जो पत्नी है उनका नाम था सरल वेन, है ना, उनसे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी जो है ये कांदीवली के एक मंदिर में की गई थी। उन्होंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ये शादी की थी सरल बेन के साथ।
2: जी जी जी जी,
0: देखिए ना क्या रंग आ गया था, गुजराती बोलने लगे थे,
1: गुजराती गाने भी गाए,
0: गुजराती गाने भी।
2: और आज इनफेक्ट जो 22 जुलाई है जिस दिन जो उनका जन्मदिन है वही उनकी शादी का दिन।
1: हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत दिलचस्प बात है
2: और शायद पर्पसली उन्होंने उसी दिन किया होगा।
1: हाँ मेरा ख्याल शायद कितनी
2: 46 में।
1: हाँ और तब उनकी उम्र थी 23 साल। कुछ गुजराती गाने गाए उन्होंने,
2: 49 सॉन्ग्स है मुकेश जी के।
1: तो फिर हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे क्योंकि आप अहमदाबाद से आते हैं तो गुजराती तो गाएंगे।
2: बहुत मशहूर गाना जो कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में है,

0: क्या बात है, क्या बात है, कितनी मिठास है इस गाने में। बल्कि वो जाया भी करते थे गुजरात रेगुलर, है ना, वहां शोज भी उन्होंने काफी सारे किए। कई लोग किशोर वर्सेस मुकेश करते हैं और कहते हैं कि एक कॉम्पिटिशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। किशोर, मुकेश, रफी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इन तीनों महान गायकों की अपनी अपनी जगह है। अब कौन सा गाना सुनाने वाले हो गोविंद आप?
1: मुख्तार भाई ने गुजराती गाना गाया, मैं भी गुजराती गा लेता हूँ।
0: अरे बाबा क्या बात है, जरूर।

0: वाह वाह वाह, एक बिल्कुल अलग रंग आ गया। गुजराती गाने हमने सुने। ये जो आखिरी दौर था मुकेश जी की गायकी का, उसमें उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के गाने गाए, चाहे वो धर्मात्मा हो, धर्म कर्म हो, कभी कभी हो, ये बाद के दौर के जो गाने हैं उनके, उनमें से कुछ गानों को याद कीजिए।
1: जैसे मुक्ति।
0: हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: आर डी बर्मन जी,
0: आर डी बर्मन के साथ बहुत कम गाने हैं ना।
1: हाँ, 16 गाने हैं।
0: हाँ, एक फिर कब मिलोगी भी है।
1: हाँ, लेकिन आमतौर से लोगों को जो पता है वैसे 5 ही गाने हैं।
0: अच्छा,
1: जो 16 गाने कुल गाए उनके साथ वैसे उन्होंने।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: लेकिन
0: मुक्ति, सुहानी चांदनी रातें।
2: हाँ,

0: अब्बादी, क्या प्यारा आलाप है इस गाने में लता जी का, और जी। क्या रंग आता है। मुख्तार भाई मेला और अंदाज जैसी फिल्मों में मुकेश नौशाद के लिए गाते हैं, फिर एक बहुत लंबा गैप आता है, और उसके बाद कहां वापस आते हैं, साथी में।
1: साथी
0: की तरफ मैं आना चाहता हूं। क्या प्यारे गाने हैं, हालांकि एक दो गाने हैं जिनकी चर्चा होती है। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं कि मैं किस गाने का जिक्र करने जा रहा हूं।
1: हाँ, हुस्ने जाना है।
0: एग्जैक्टली इसी गाने की बात करनी है।
1: हुस्ने जाना इधरा आईना हूं मैं तेरा,

क्या बात है, क्या बात है। यहाँ कुछ बातें जो ये जो गानों के बीच में जो जानकारी की पुड़ियाएं मैं छोड़ता रहता हूँ वो जरूरी है बताना कि मजरू साहब अंदाज में लिखते हैं नौशाद साहब के लिए, और उसके बाद एक पूरा लंबा गैप आता है कई दशक के बाद। साथी में फिर से नौशाद और मजरू आते हैं, मुकेश और नौशाद आते हैं, और ये पूरा वेस्टर्न नोटेशन वाला मामला था जो कि नौशाद की फितरत नहीं थी। तो ये एक बड़ी बात है। केरसी लॉर्ड जो है उन्होंने सारा अरेंजमेंट इस इन गानों का किया था। बारिश का मौसम है और मुकेश जी की याद जो है जुलाई और अगस्त ये वो महीने हैं जो जब पानी जम के बरसता है, और मुकेश जी का जन्मदिन आता है और उनकी याद का दिन 27 अगस्त भी आता है। बारिश के कुछ गानों की बात करते हैं। पहले शोर नहीं बाबा, शोर।

0: वाह, जिस तरह से इस साल गर्मी पड़ी है हाँ। मुझे लगता है ये गाना बिल्कुल मुफीद है कि बरखा रानी जरा जम के बरसो, उतना ज्यादा जम के ना बरसो
1: हाँ, आना जाने मुश्किल हो जाए
0: लेकिन फिर भी बरसो, है ना। बारिश के दिनों में या कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शो के लिए बहुत लेट हो गए हो और एकदम से सीधे स्टेज पर जाना पड़ा हो?
1: हाँ हाँ, ऐसा कई मरतब ऐसा मौके आए हैं कि बारिश के दिनों में, क्योंकि आमतौर से अपने का थोड़ा सा सिस्टम जो है रोड पे पानी भर जाना या हाँ, हाँ। कभी गाड़ी अगर जा रही और गाड़ी खराब हो गई, कहीं ट्रैफिक जाम है तो कभी थोड़ी सी देरी हो गई, एक दो मरतबा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है
0: और सीधे स्टेज पर जाना पड़ा। तो कैसी कैफियत होती है उस वक्त?
1: थोड़ा सा वो होता है अनकम्फर्ट, लेकिन ठीक है, वो थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस और वो रहता है तो प्रैक्टिकली इसको निभा लेते हैं।
0: अब गोविंद, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एकदम से डिलेज हो गए और भागते दौड़ते हाफते हुए?
2: मैं तो एक बार प्रबोधन ठाकरे में ऐसा हो गया था, एकदम अटक गया था और ब्लेजर पहनने का मौका नहीं मिला था ऐसे ही जाके पहला गाना गाया, उसके बाद आके चेंज किया।
0: क्या बात है,
2: कर्टन ओपन हो चुका था, अनाउंस एंकर ने अनाउंस कर दिया सब है, अब इंस्ट्रूमेंट दो दो बार बज गए।
0: अरे बाप रे बाप,
2: सिंगर आया ना, माइक भी चेक नहीं किया, जैसे मिला वैसे गाया।
0: और उसमें ये है कि आपको अपना एक तो बैलेंस प्रॉपर रखना है ना, और उसके बाद गाने को पूरी तरह से निभाना है क्योंकि लोग सीधे मुकेश जी से तुलना कर रहे हैं।
2: अब कितने भी टेंशन रहे बैक स्टेज, आपको टेंशन छोड़ के स्टेज पे रिलैक्स होके जाना है।
0: बिल्कुल,
2: लोग सुनने के लिए आए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको बेस्ट देना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि सफर करते हुए लोगों ने पहचान लिया और कहा कि भाई आपके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हमने आपके फला शो में आपको देखा था?
1: हाँ, ऐसा तो बहुत मरतबा होता है।
0: और लोग गाने वाने की फरमाइश भी कर देते हैं?
1: कभी कुछ लोग होते हैं ऐसे कि हाँ, कि बोल देते कह रहे यार दो लाइन गा ही दो।
0: मतलब मूड है कि नहीं
1: वो नहीं, वो लोगों का तो लोग इतने स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो शायद वो एक जज्बात में आ जाते हैं शायद हाँ, देखने के बाद के उनको ऐसा लगता है कि शायद ये हर जगह यही काम करते रहे।
0: मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ मामला गोविंद आपके साथ भी होता है?
2: बहुत बार हुआ है, अभी तो एक रिसेंट में भी हुआ था, मैं आरसीटी गया था वाइफ के साथ कुछ कपड़े लेने के लिए हाँ। तो वाइफ तो लेडीज सेक्शन चली गई, मैं जेंट्स में, तो मेरे पीछे पीछे एक आदमी घूम रहा है।
0: अच्छा,
2: मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों रहा है मेरे पीछे पीछे। मैं मेरी वाइफ को इशारा किया, देखो कोई घूम रहा है, तो फिर पीछे से किया, मैं कहा मिश्रा भाई तमें सिंगर छो हाँ, अरे वाह मैं आपको सुनता हूँ, बड़ा मजा आता है, ऐसा वैसा, एक सेल्फी ले लेंगे फोटो, ठीक है कुछ गा दीजिए, किसी की मुस्कुराहट पे गा दीजिए।
0: अरे बाप रे बाप, मतलब
2: यहाँ पे कैसे, हाँ यहाँ पे कैसे गाओ, फिर गाया दो लाइन धीरे से उसके लिए मैंने।
0: देखिए ये होता है,
2: किसी को नाराज नहीं कर सकते,
0: संगीत के दीवाने उनको खुश करने के लिए।

0: क्या करना पड़ता है।
1: सच में।
0: अच्छा ये बताइए, आज की इस बहुत शोर भरे, भाग दौड़ भरे, व्यस्तताओं से भरे जमाने में मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है?
1: थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन यही है कि मैं पर्टिकुलरली मानता हूं कि इंसान अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर, खासतौर से पुराने गाने, चाहे वो मुकेश जी के हैं और सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, चाहे वो किशोर कुमार साहब के आप सुन लो या रफी साहब के, अगर ये पुराने गानों के अंदर इतना ठहराव और सुकून है कि अगर आप वो सुन लो तो दिमाग डेफिनेटली आपका खुश हो जाता है या शांत हो जाता है। और इसी वजह से मैं हमेशा स्टेज पर कहता हूं कि ये पुराने गानों के अंदर जो बात है, जो मेलेडीज है, अगर ये पुराने गाने अपने ढाई तीन घंटे सुन लिए तो अगले एक साल तक यकीन मानिए कि नो कार्डियोग्राम, नो ECG, नो ब्लड टेस्ट।
0: बड़ी प्यारी बात बोली गोविंद, आप बताइए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो बहुत लोगों के मुंह से सुन भी लिया हूं कि बोलते हैं कि म्यूजिक से अच्छा मेडिसिन कुछ नहीं है। और आज के टाइम पे इतना दौड़ भाग वाली जिंदगी में सबको रिलैक्स चाहिए, और जो ढाई तीन घंटे का, चार घंटे का समय लोग निकाल के आते हैं हमें सुनने के लिए, वो उस समय मतलब मैं तो कितने लोगों को सुनते हुए ऐसा बोलते हैं मुझे कि ये तीन चार घंटे मुंह सेहरा में चले जाते हैं, वे एकदम भूल जाते हैं सब कुछ, सारी दिमागी टेंशन एकदम खत्म हो जाती है। वो तीन घंटे का रिलैक्स हमको अगले एक हफ्ते तक का एनर्जी देता है।
1: एग्जैक्टली।
0: अच्छा ये जो आजकल इंस्टाग्राम का और ये जो 60 सेकंड की और 30 सेकंड की रीलों का जमाना आ गया है, क्या उससे लोगों का फोकस खत्म हुआ है? क्या आपको ये लगता है कि ऑडियंस में कोई बंदा फोन पे लगा हुआ है या हम गा रहे हैं?
1: हाँ, कुछ लोग होते हैं ऑडियंस में डेफिनेटली, ऐसे इस दौर में भी मैंने देखा कि हमारे पुराने गानों का प्रोग्राम चल रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शायद हो सकता है कि वो लोग हों जो किसी के बुलाने की वजह से शर्म में आए हों या जबरदस्ती, या शायद वो चीज को लाइक नहीं करते हों, क्योंकि जिसको खुदा ने संगीत दिया ही नहीं है दिल में, और उसको अगर वो जगह पर लाकर बिठा दो तो शायद उसके लिए टाइम पास कैसे करके और यहां से मैं अपना खत्म करके जाऊं, ऐसे शायद वो लोग होते होंगे। बाकी आम तौर से अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग हमारे पुराने गीतों को सुनने आते हैं प्रोग्राम में, वो फुल्ली एंजॉय करते हैं। और मेरा बिल्कुल मानना यह है कि जो दिल से जुड़ा हुआ पुराने गीतों के साथ, मेलेडीज के साथ है, अगर वो दिल से इसको एंजॉय करेगा तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट वो इंसान के दिल और जहन पे होगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही प्यारी बात है। गोविंद, आप क्या कहेंगे कि जो भी लोग लाइव म्यूजिक सुनने आते हैं, चाहे वो फिल्म म्यूजिक हो या इंस्ट्रूमेंटल हो या क्लासिकल म्यूजिक हो, मोबाइल एटिकेट क्या होने चाहिए? लोग किस तरह का न्यूसेंस करते हैं?
2: इसका जवाब तो मैं मुख्तार भाई से ही चाहूंगा, वो भी दें, क्योंकि सीनियर यही है, ये ज्यादा देखते हैं।
0: सबसे पहले तो अपना मोबाइल म्यूट
1: रखना चाहिए डेफिनेटली,
2: वो तो जरूरी है।
1: और अगर आपका एटलीस्ट कभी कोई इंसान ऐसा है कि प्रोग्राम में आया और उसको कोई ऐसा इमरजेंसी कॉल वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट वो वाइब्रेशन पे रख दे ताकि उसको पता चल जाए। लेकिन आप जो जिसको एंजॉय करना है उसको दिल से एंजॉय करना चाहिए,
0: बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना।
1: एग्जैक्टली।
0: मुझे लगता है कि हम अपनी इस बातचीत के लगभग आखिरी दौर में आ गए हैं, और अब अपनी अपनी पसंद के कुछ गाने आप लोग जो हैं उनका जिक्र करेंगे और उनमें से कुछ गाएंगे, और उसके बाद फिर हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेंगे।
1: जहां तक ताल्लुक यूनुस भाई हमारा ये पसंद का है, तो हमको तो मुकेश जी के सारे गाने पसंद हैं, लेकिन अब पर्टिकुलरली जैसा मैंने बताया कि कलाकार होता है तो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो हमको थोड़े वैसे गाने अच्छे लगते हैं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे हुआ, हाँ, जिस गली में तेरा घर ना हो, बालमा हुआ,

0: ऑलरेडी आप कर चुके हो वैसे।
1: कब से सोच रहा हूँ मैं।
2: अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अंताक्षरी खेलें, आप एक गाना गाएं और अब जाहिर है कि इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये करते हैं 5 मिनट तक।
0: एक चलिए मेरा पसंदीदा गाना।

0: है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: राव पर लाकर छोड़ा है इन्होंने।

0: क्या प्यारी बात है। इसी स्टूडियो में जहां हम बात कर रहे हैं योगेश जी आए थे और उन्होंने अपने गानों की कितनी सारी कहानियां मुझे सुनाई थी। बहुत प्यारे शानदार गीतकार, कितना प्यारा गाना उन्होंने ये लिखा है। और देखिए मुकेश के गानों से भी अंताक्षरी खेली जा सकती है, ये हमने अपने सुनने वालों को बताया कि केवल मुकेश के गानों की अंताक्षरी हुई। एक आइडिया हमने लिसनर्स को दिया है कि वो मुकेश को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि उनकी अंताक्षरी भी खेले अपने घरों की महफिलों में, अपने आयोजनों में, तो कितना मजा आएगा। अब बस श्रोताओं से इजाजत लेने की बारी है, तो मुकेश को श्रद्धांजलि देते हुए आप दोनों मिलकर कौन सा गाना पेश करेंगे?
1: जीना है मरना है कल खे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉ सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है, जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य

जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अक्टूबर 9 महीना 9 दिन वेगे
1: करो गास वेगे
0: जना तेल बेटी जल में नागी जना कंस राजा ने मालूम वेगो आकलागो मार वेरी जल माव को करतानी गोकुले नातानी आम देख और बालान मांग ली दे
1: कैसे बाई कलागो
0: बिया कलागो छोरी छ ए वर्द हाई फेरो कंस आकाशे फेंक दिन आकाशे

0: मेरे ऊपर एक दी तीन चार पाँच चावा छोरी जलमे नाई फेको कोनी काई आकाशे फेंक दिनो
1: फेक दिनो
0: आकाशे बिजली बनगी
1: बनगी
0: पचमक लागो राजा वेगो मन मारे वालो कोई चाहिए
1: कतानी
0: कौन सा राजा हिम्मत बांधतानी गादी बेचगो गादी
2: बेटो
0: जना वासुदेव देव का नाराज वेगे तू काई करा के लागो।

0: भगवान श्री कृष्ण बारह वास्ता बरोबर जल में नाय
1: आगो महाराज
0: जल में नाय बाद में रात्रि बारे न पण पच्चा कंस राजा मालूम को नहीं हो वासुदेव देव का किला आप कला को कृष्ण भगवान जल में ना होगा
1: करो का
0: पछ कु काई करू

0: भगवान जल में नाव गो
1: आगो
0: वासुदेव देवकान केला
1: काय केला गो
0: काय करा आपण छातो कला गो घर छोड़े जाओ घर छोड़े
2: जय
0: जन बोटे मेरे ऊपर काय वेगो रात जैसे जून चाली में भूल मत पड़े तो करता नहीं आपण कला गो माते पर पोटला पारता नहीं गोकुले जाओ गोकुले न
2: जय
0: जना निकले चढ़ार पानी पड़ो पानी

0: घर घर मांडेला कुणशी गोपीरी नजर लागीये एक अनारी नींद जागी
1: कोणी काय
0: कचे कचे गोपी ऐक लागो मार छोरान के लागो तुम नजर लगा देनी करता नी कुण भांडे लाग यशोदा याडी वो गोपीन भांडे लाग गोपीन सोनी पालनो रसम डोरी भगवान हला ताणी गीत बोलो भगवान रे नी भगवान।

ना घर घर हाथ बताओ मैया भगवान रोए लागो भगवान सोए नी जना वो टेबल ऊपर तू काई करनू एक महाराजे घर लेगी हाथ बताए लींबू तिंदू कोड़ी मंगाए वो नजर काड़ी पड़ा रे नी।

0: पर भांडे लाग जना हाथ जोड़े उभरेगी
1: उभरेगी महाराज
0: वेर कनिकला को चुकवेगी प्रणाम माफ कर कोन मार कला को गोपी मार गलीम ना आनू गलीम ना हनु कटाणी याड़ी यशोदा वो गोपीन भांडे से प्रणाम वो यशोदा याड़ी भांडे बाद में कुकाई करनु कला को गोपी तो देखे साइकिल गमे
1: गमे
0: भगवान कुकाई देखने कटाणी हन विचार कर विचार।

वासुदेव देवकान केला देखरेख लागो नानक्या थोड़ा मोटो वेगो आप रमे लागो कलागो आप कलागो दने दने ती गोपी का भी संगत लागो दूर को।

0: से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
1: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
1: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय के अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए, हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा

0: के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
1: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठीचार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी की बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के रजिस्ट्रेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
2: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
3: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
4: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
5: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9.